बंधन छूटे सब किच हो तू पाए नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सिखा सब तज गए